इलेगी लाख टू टू टू सक्स हो गया मैं आपने लाख चाव का नया नया वंग मिपी वाले पेनिक पता सिला लगी गया ना आप लोगों ने तो मान की बाल लंग में अम्मा के चंग में नित संग ना तमालू तलू तुम ना सुलाओ मिगिट्सी तू सायक समिं